आप MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 सुन रहे हैं। जिंदगी आखिर है क्या? हम सबकी जिंदगी अलग और सबकी अनुभव अलग हैं। हर कोई जिंदगी को एक जैसा नहीं देखता। शुरू करते हैं एक प्रार्थना गीत से, जो आशा श्रीराम से प्रस्तुत किया जाएगा।

0: धन्यवाद आशा। आगे हम मधु और शारदा के द्वारा एक कविता सुनते हैं।
1: तुम कितने सुंदर लगती हो, जब तुम हो जाती हो उदास, ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सुने खादंबरी के आसपास, मधुबरी चांदनी जगाती हो।
2: मुख पर धांक लेती हो अंचल, ज्यों दुबे राधे रवि पर बादल, या दिन भर उठकर थकी किरण, सो जाती हो पाके समेत आंचल में आलस उदासी बन, दो भूले बतके सादिया विहाग, पुतली में कर लेते हैं निवास, तुम कितने सुंदर लगती हो, जब तुम हो जाती हो उदास।
1: खरे आंसू से धुले घाल, खूके हर के अधखुरे बाल, बालों में अजब सुनहरापन, जाती जो रेशम के किरणें, समझा के बादरे से चंचन, मिसरे के होंठों पर सूखी किन, अरमानों की विकाल प्यास, तुम कितने सुंदर लगती हो, जब तुम हो जाती हो उदास।
2: बावरों के पाते उतार उतार, खानों में झुककर गुनगुन खार कर, हे पूछे रही क्या बात सकी, उन्मन पलकों के कोरों में क्या धाबी धंकी बरसात सकी, तुम कितने सुंदर लगती हो, जब तुम हो जाती हो दास।
0: धन्यवाद मधु और शारदा, आपकी कविता बहुत सुंदर थी। अब राची, नेहा और सिमरन गाना गाएंगी।

0: एक दिन।
1: धन्यवाद राची, नेहा और सिमरन। अब सुनते हैं एक कविता अनुषा से।
2: तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश ना कर। अपने हाथों को फैला, खुल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। जो मिल गया उसी में खुश रह, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश ना कर। रास्ते की सुंदरता का लुफ्त उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश ना कर। तो जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर।
3: धन्यवाद अनुषा, आपकी कविता ने हम सबका दिल छू लिया।
1: अनुषा जैन एक चुटकुला सुनाएंगी।
4: बिगड़ी हुई जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है, 10% हम बचपन से पागल है, 90% आपकी मेहरबानी है। ना जाने लोग जिंदगी भर यादों के साथ कैसे जी जाते हैं, हम तो एक चैप्टर याद करके सोते हैं, सुबह वो भी भूल जाते हैं। धन्यवाद
2: अनुषा जैन, कहना पड़ेगा तुसी बड़े मजाकी हो, तुसी बड़े मजाकी हो।
3: आगे हम सना और श्वेता से कविता सुनेंगे।
5: मेरी प्यारी माँ, जग है अधियारा, तू उजियारी है, शहद से मीठी है तेरी बातें।
6: आशीष तेरा जैसे हो बरसाते, डांट तेरी है मिर्ची से तीखी।
5: तुझ बिन जिंदगी कुछ फीकी, तेरी आंखों में छलकते प्यार के आंसू।
6: अब मैं तुझसे मिलने को भी तरसू, माँ होती है भारी भारी, सबसे सुंदर प्यारी प्यारी।
3: धन्यवाद सौंदर्या, अब हम आर्य से कुछ सुनना चाहेंगे।
7: अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिंदगी पल पल डलती है, जैसे रेत मिट्टी से फिसलती है।
1: अब चेतना और जननी हमसे जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं।
8: तो दोस्त, मुझे ये बताओ कि जिंदगी क्या होती है।
9: पहले तो बच्चा पैदा होता है, फिर पढ़ाई, फिर जॉब, फिर शादी, फिर उनके बच्चे, उनके पालन पोषण, शिक्षण, शादी, और फिर आदमी तो इतना भाग दौड़ के बाद आखिर में जिंदगी खत्म हो जाती है।
8: मगर क्या जिंदगी बस यही एक चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं?
9: जिंदगी आखिर में एक चीज नहीं मानी जाती। जिंदगी के हर एक पल में ऐसे अनेक भावनाएं होती है जिनके कारण जिंदगी का एक मूल अर्थ निकलता है।
8: चलो अब बात करते हैं जिंदगी के हर एक मोड़ के बारे में। जैसे कि इंग्लिश में शेक्सपियर ने 7 stages of life लिखा था, वैसे ही अब हम डिस्कस करेंगे।
9: पहले तो जिंदगी में पहली मोड़ होती है एक बच्चे और माँ की संबंध। बच्चा तो इस दुनिया में ऐसा होता है कि उसे बात करना नहीं आता, उसे चलना नहीं आता, उसको वो समाज की समझ नहीं होता। तो इस सब के शिक्षण अपनी माँ ही उसको देखती है। एक माँ का प्यार उसके बच्चे के और कभी भी बदलता नहीं है, अत्यंत अधिक होता है। बच्चा प्यार के बारे में अपनी माँ से ही पहले पहले सीखता है, और इस प्यार के वजह से वो जान सकता है कि वो किसी और से कैसे प्रवर्तित करे। और इसके वजह से जो जब वो बड़ा होके जिंदगी जीता है, तब उसको भी प्यार का मतलब पता चल।
8: प्यार की परिभाषा तो माँ समझाती है, फिर बड़ा होता है बच्चा तो वो स्कूल जाने लगता है, शिक्षा ग्रहण करने लगता है। तब उसके आस बगल में बहुत सारे और लोग होते हैं जिनसे उसे मिलना जुलना पड़ता है, और ये वह वहाँ रह के ही सीखता है। पर यहाँ उसकी प्यार की परिभाषा बदलने लगती है यहाँ से, और यहाँ से जब वो और थोड़ा बड़ा होता है और ज़िंदगी में कुछ करने के लिए निकलता है, तब उसकी प्यार उसके अलावा उसके उसकी प्यार की परिभाषा कुछ बदल सी जाती है। वो पहले की तरह नहीं रहता है, उसके लिए अपना जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि औरों के लिए जीता है पर खुद के लिए जीने लगता है।
9: इस बीच में वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेता है, और फिर पढ़ाई के बाद जॉब वर्क करना शुरू कर देता है। ऐसे करने में ऐसा हो जाता है कि उसका जिंदगी में जो भी भावनाएं होती है वो बहुत अपने ही बारे में सोचने लगता है, जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया। ऐसे होने पर ये क्या हो जाता है कि समाज की कल्याण करने के लिए वो कुछ करता ही नहीं है। इसके कारण अब आज की जिंदगी, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग खुदकुशी और अनेक इलनेसेस से सफ़र करते हैं। तो इस कारण ज़िंदगी में ये पता चलता है कि इस मोड पे ज़्यादातर हमको दोस्ती, प्यार और ऐसे अनेक भावनाओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसी सहारा की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से हम जान सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या होता है हमारे ज़िंदगी में। औरों के लिए भी कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हम शादी करने से जान सकते हैं, जब हम अपने ही बारे में नहीं बल्कि हमारे पति या पत्नी के बारे में भी सोचने लगते हैं।
8: जो एक मनुष्य को अपना ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य के बारे में सिखाता है। दोस्त ऐसे चुनने चाहिए जो हमें बढ़ावा दे, हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, हौसला दें, ना कि जो दोस्त जो हमें नीचा दिखाए या फिर खराबी करे अपनी ज़िंदगी की या पीठ पीछे बात करे, वैसे नहीं होने चाहिए दोस्त। दोस्त को एकदम सोच के चुनना चाहिए, पर कौन दोस्त चुनता है, दोस्त बन जाते हैं।

0: तो इट्स लाइक हाउ यू सी।
1: दोस्त तो सभी लोग होते हैं, मगर असली दोस्त कौन होता है? जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया, जो भी लोग हमको हौसला देते हैं, जो भी हमारा सहारा देते हैं, जबकि कोई भी हमारा सहारा नहीं हो, जब भी हम इतने दुखी हो जाते हैं जिंदगी से या अपने कुछ खुद के प्रॉब्लम से, तब जब एक मनुष्य हमारे लिए बोल आके हमारे कंधे पे हाथ लगा के बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तो हूँ तेरे लिए, तो ऐसे बोलने वाले लोग ही असली दोस्त होते हैं। जो भी हमको हमारे बारे में वो अच्छाई बुराई सब कुछ जानते हैं, वही एक अच्छा दोस्त बनता है।
2: क्या है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें ये कहते हैं हंसते रहो तो आसान है जिंदगी।
3: धन्यवाद सना और श्वेता।
4: अब सौंदर्या हमें एक गाना सुनाएंगी।

0: दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
1: दिस इज आरजे ऐश्वर्या एंड शारिन फ्रॉम सेकंड बीए जर्नलिज्म MOP CRS Radio 107.8. Our community, our radio, our pride.